0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
1: बनारस।
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस, अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, hello Banaras.
5: Hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello,
3: Banaras.
2: 91.2 FM, hello, Banaras.
4: अलर्ट,

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पक्कड़

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: रामचंद्र, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ दुर्ग।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
4: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस
5: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello,
4: Banaras.
5: 91.2 FM, hello Banaras.
6: Hello Banaras.
1: Allad

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: भाषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: इतिहास से भी परे बनारस,
1: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
0: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: अल्लड़ पक्का।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस
5: 91.2 FM, हेलो बनारस,
6: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello,
4: Banaras.
5: 91.2 FM, hello Banaras.
6: Hello Banaras.
1: Allad

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: शंख, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: गली मोहल्ला मोक्ष मसान
1: कचौड़ी जलेबी आटा पिसान
0: बाजार ठटेरी लंगड़ा आम
1: लंका अस्सी बनारसी पान
0: गिरजा को दही बिस्मिल्ला खान
2: 91.2 FM हेलो बनारस
0: प्रेमचंद जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद
3: बुद्ध धाम और सारनाथ
0: बस इतना नहीं बहुत बनारस
1: इतिहास से भी परे बनारस
4: अद्भुत आदि अनंत बनारस
1: दिल के बहुत करीब बनारस 91.2 FM हेलो बनारस पक्का बनारसी
5: हेलो
2: बनारस
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: हेलो बनारस,
1: हेलो बनारस।
2: हेलो बनारस दुहावली
0: 91.2 FM। हेलो बनारस,
1: हेलो बनारस।

0: 102.2 FM. Hello, Banaras.
1: Hello, Banaras.
2: Hello, Banaras. Duhawali.

0: हेलो बनारस दुहावली
1: 91.2 FM हेलो बनारस
2: हेलो बनारस
0: ईश्वर की ओर
3: उपासना
4: खुशी तो हमारा स्वरूप है, स्वभाव है, यही तो अध्यात्म है।

0: जब भी शिष्य राजी होता है गुरु प्रकट होता है।
1: ईश्वर की ओर
2: उपासना हर रोज सुबह 7 से 9 सिर्फ 91.2 FM हेलो बनारस पर।
3: हेलो बनारस दुहावली।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: ईश्वर की ओर
3: उपासना
4: खुशी तो हमारा स्वरूप है, स्वभाव है, यही तो अध्यात्म है।

0: जब भी शिष्य राजी होता है गुरु प्रकट होता है।
1: ईश्वर की ओर
2: उपासना हर रोज सुबह 7 से 9 सिर्फ 91.2 FM हेलो बनारस पर।

0: सोमवार का शुभारंभ सिर्फ हेलो बनारस के साथ 91.2 एफएम।
1: 91.2 एफएम हेलो बनारस पक्का बनारसी।

0: हेलो बनारस दुहावली
1: गुरु गोपाल दास जी कहते हैं,
2: कबीर दास जी ने बहुत अच्छी चीज की कही है, चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ से धन घटे, कह गए दास कबीर। चिंता से चतुराई घटे, जब चिंता होती है ना तो इंसान के ठीक से सोचने की जो कैपेसिटी वो खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर एक तालाब अगर आप देख लीजिए पानी का, तालाब में पानी अगर बहुत ज्यादा उथल पुथल हो रहा है ना तो तले पे क्या है दिखाई नहीं पड़ता। अगर तालाब के तले पे क्या है वो देखना है तो पानी को शांत होने देना पड़ता है। उसी तरह जिंदगी में भी अगर ठीक से क्या है देखना है, क्लैरिटी के साथ देखना है, क्लैरिटी के साथ निर्णय लेना है, चतुराई से देखना है तो मन को शांत रखना पड़ता है तालाब की तरह। जिस मन में वो उथल पुथल है जैसे तालाब में उथल पुथल है, तालाब के तले पे कुछ दिखता नहीं और जिंदगी में सामने कुछ दिखता नहीं। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। और बहुत ज्यादा दुख जब मन में होता है ना तो शरीर घटने लगता है, शरीर की बीमारी होने लगती है। इसलिए कहते हैं ना, अगर बर्तन में खिचड़ी पके, अगर बर्तन में खिचड़ी पके तो बीमार इंसान भी ठीक हो जाता है, लेकिन अगर दिमाग में खिचड़ी पके तो अच्छा इंसान भी बीमार हो जाता है। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, लोभ से धन घटे। जिस जिस लोभ से लोगों ने इतने स्कैंडल किए, स्कैम किए, लफड़े किए, झमेले किए, पैसा ऐसा आया लेकिन पकड़े गए तो ऐसा गया। लोभ से धन घटे, कह गए दास कबीर।
0: गुरु 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस,
4: हेलो बनारस।

0: हेलो बनारस दुहावली
1: 91.2 FM हेलो बनारस पक्का बनारसी
2: पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: कुंभ पर्व की कथा आपने अवश्य सुनी होगी। हुआ यूं कि शिवजी की आज्ञा से देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया और उस मंथन के बाद उसमें से अमृत का कुंभ यानी खड़ा निकला। इस अमृत के कुंभ को देव दानव दोनों ही पाना चाहते थे। अवसर पाकर दानवों का सेनापति राहु उस अमृत के घड़े को लेकर भागा। भागते राहु के हाथ के घड़े से अमृत की कुछ बूंदे छलकी और वो हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में जा गिरी। ये अमृत की बूंदे गिरने से ये चारों स्थान परम पवित्र हो गए। यहाँ स्नान करने वाले को पाप मुक्ति का वरदान मिला। पाप मुक्ति से सुख और आनंद की प्राप्ति होती है। कुछ इसी तरह का आनंद प्राप्त होता है माता वैष्णो देवी के उस भक्त को जो उनके दर्शन पाता है। एक बार माता के दर्शन करने के बाद भक्त का मन बार बार माता को पुकारता है और जब तक फिर माता की कृपा नहीं होती भक्त का मन उसके दर्शनों के लिए तड़पता रहता है, उसे पुकारता रहता है।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM. हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी.
1: ये है मॉर्निंग लाउड स्पीकर. मॉर्निंग लाउड स्पीकर.
2: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल. मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु. शुरू हो चुका है हमारा शो मॉर्निंग लाउड स्पीकर ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर. और बोले भैया, इस समय इसलिए शुरू हो चुका है कि घड़ी में बज चुके हैं अब 9, तो इसका मतलब बिल्कुल है साफ कि अब सुधांशु को आना है लेकर अपना लाउड स्पीकर. आज करेंगे ढेर सारी मस्त मस्त बातें, क्योंकि आज दिन है सोमवार का, और करेंगे ढेर सारी हम इन्फॉर्मेशन शेयर. कहीं बस जाने का नहीं, केवल सुनने का. 9839912912 पर अपने व्यूज भी शेयर कर सकते हैं. तो बस सुनते रहिए 91.2 FM हेलो बनारस विद आरजे सुधांशु. बोले तो बस यही है पक्का बनारसी.

0: वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM. हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी.
1: ये है मॉर्निंग लाउड स्पीकर. मॉर्निंग लाउड स्पीकर.
2: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल. मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु. चल रहा है हमारा शो मॉर्निंग लाउड स्पीकर ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर. और आज अपने लाउड स्पीकर के माध्यम से हम आप सभी को बता दें कि सुनो सुनो सुनो, अगर आप करना चाहते हो किसी को विश या देना चाहते हैं उन्हें ढेर सारी बधाइयां, तो बस इसके लिए कहीं जाने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का, बस व्हाट्सएप करने का 9839912912. इस पर आप कीजिए व्हाट्सएप. सुधांशु बैठा हुआ है ना, आपके बिहाफ पर करेगा उन्हें विश, जिसे सुनेगा सारा विश्व ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर. तो भैया कहीं जाने का नहीं, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ है सुधांशु. यही है पक्का बनारसी.

0: खफा खफा से
1: हाय मर जाऊं।
0: हम भी थे एक नजर के प्यासे,
1: क्यों नहीं
0: दिल पे उसने जो हाथ रखा आ गया आराम।

0: किस अस्पताल लेकर जाऊं?
1: इन्हें लेकर जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़ूपुर, जहां MCH न्यूरो सर्जन डॉक्टर विजय कुमार और उनकी टीम 24 घंटे तैयार रहती है, जहां पर है CT स्कैन, मॉड्यूलर OT, एडवांस माइक्रोस्कोपिक मशीनरी, जिससे बड़े से बड़ा जटिल ऑपरेशन भी अब एक ही छत के नीचे संभव है। वहां पर आयुष्मान कार्ड, दीनदयाल, TPA और हर तरह की कैशलेस सुविधा है। तो बहन जी आप चिंता मत करो, आप जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़ूपुर।
2: न्यूरो से संबंधित सभी समस्याओं का इलाज पाएं 24/7 मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़ूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। कॉन्टैक्ट 9628888824 या फिर 9838501702।
3: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
4: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
3: अरे बेटा,
4: ये क्या कर रहे हो अंकल?
3: सुनो
4: गलत है ये।
3: अरे सुनो बेटा
4: अंकल।
5: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
6: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़ूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
7: जब स्वच्छता की होगी बात, तभी सुधरेगा घर परिवार,
2: क्योंकि 91.2 FM हेलो बनारस आपके लिए लेकर आ रहा है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जिसमें मैं स्वच्छिका
7: और मैं सुजल आपको देंगे जानकारी की भरमार।
2: तो सुनना ना भूले, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम ठीक शाम 5 बजे से।
8: अरे बहन इतनी परेशान क्यों हो?
9: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
8: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़ूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
10: बेटा A+B का होल स्क्वायर क्या है?
11: A²+B²+2AB।
10: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
12: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।
10: क्या कट मारा है, मजा ही आ गया।
13: अरे अरे अरे, कैसे बेशरम लोग हो गए हैं, बाइक तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे नागिन।
14: अरे भाई और तेज भागा।
5: आपकी एक भूल आप पर भारी पड़ सकती है। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स का पालन करें, खुद को और अपने साथ सड़क पर चलने वालों को सुरक्षित रखें। 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
7: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
15: पक्का बनारसी।
5: अब अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स को दीजिए नई पहचान, डिजिटल और रेडियो के जरिए अपने बिजनेस को पहुंचाएं लाखों लोगों तक। किसी भी तरह के एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें हेलो बनारस 91.2 FM से। कॉन्टैक्ट 9125136000 या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9839912912 पर। आप हमसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा इंस्टा हैंडल है हेलो बनारस FM। जल्दी कीजिए, आपकी तरक्की हमारा प्रयास।

अज समझे

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है दीदी?
0: अरे हो रहना किसी के,

0: कुछ कहोगे नहीं?
1: वो सब कुछ जो मुझे नहीं कहना चाहिए था मैं तुमसे हमेशा कहता रहा, और अब जब कुछ कहना चाहता हूँ तो कुछ कह नहीं पा रहा हूँ।
0: ऐसा मत कहो।
1: कितना बदनसीब हुए हैं, जब तुम घर में थी तो मैं बाहर का बना रहा, और अब जब तुम्हें घर का बना हूं तो मैं बाहर जा रही हूँ।
0: फिर तुम ही कहने वाले हो जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए। मैं सब कुछ जानती हूँ। तुमने सबको धोखा देना चाहा, लेकिन धोखे में तुम खुद आ गए। हम सब इस धोखे में खुश हैं। माँ, पिताजी, तुम, मैं, हम सबको इतने साल जो तलाश थी वो मिल गया। तुम्हें वो सब मिल गया जिसकी तुम्हें तलाश थी।

0: वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM. हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी.
1: ये है मॉर्निंग लाउड स्पीकर. मॉर्निंग लाउड स्पीकर.
2: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल. मैं आपका दोस्त सुधांशु और चल रहा है हमारा शो मॉर्निंग लाउड स्पीकर ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर. और अभी एक बड़ी मजेदार बात होने का टाइम हो चुका है. जी हाँ, आज है हैप्पी वाला बर्थडे रत्ना मैडम का. तो रत्ना मैडम को हो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. इनको बर्थडे विश करने के लिए हमारे पास व्हाट्सएप आया हुआ है. प्रदीप बाबू यानी इनके प्यारे हस्बैंड और साथ में इनके प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल हनु भैया और मायरा जी करना चाहती हैं अपनी प्यारी मम्मा को हैप्पी बर्थडे विश. इन्होंने हमें किया है व्हाट्सएप 9839912912 पर. तो हमने तो कर दिया इनके बिहाफ पर रत्ना मैडम को हैप्पी वाला बर्थडे विश. वैसे सुधांशु और हेलो बनारस की टीम तो बस यही कहेगी रत्ना मैडम.

को। ये हो गया हैप्पी बर्थडे विश रत्ना जी को। अगर आप भी चाहते हैं अपनों को करना विश या देना चाहते हैं बधाई है तो हमें कीजिए व्हाट्सएप 9839912912 पर। हम करेंगे आपके बिहाफ पर उन्हें विश जिसे जुड़ेगा पूरा विश ओनली ऑन 91.2 FM। हेलो बनारस विद आरजे सुधांशु। बोला तो यह पक्का बनारस है।

0: कूल वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM. हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी.
1: ये है मॉर्निंग लाउड स्पीकर. मॉर्निंग लाउड स्पीकर.
2: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल. मैं आपका दोस्त सुधांशु और चल रहा है हमारा शो मॉर्निंग लाउड स्पीकर ओनली ऑन 91.2 FM. हेलो बनास विद आरजे सुधांशु. और अभी हमने विश किया है रत्ना मैडम को, क्योंकि उनका है आज हैप्पी वाला बर्थडे. इनको बर्थडे विश करने के लिए हमारे पास व्हाट्सएप आया हुआ है. इनके प्यारे से पतिदेव प्रदीप बाबू और साथ में है इनके प्यारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, हनु भैया और मायरा जी. इन सभी के बिहाव पर हमने कर दिया रत्ना मैडम को हैप्पी बर्थडे विश. अगर आप भी चाहते हैं अपनों को करना विश या देना चाहते बधाइया, तो हमें कीजिए व्हाट्सएप 9839912912 पर. हम करेंगे आपके ब्याह पर उन्हें विश, जिसे सुनेगा पूरा विश्व ओनली ऑन 91.2 FM. हेलो बनास विद आरजे सुधांशु. बोला तो यही है पक्का बनास है.

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

सी बातें एंड चिल वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM ओनली ऑन 91.3.

0: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।
2: पंक्ति यात्रा। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। अब जाने कौन सी नगरी में आबाद हैं जाकर मुद्दत से। मैं देर रात तक जागूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। कुछ बातें थी फूलों जैसी, कुछ लहजे खुशबू जैसे थे। मैं शहरे चमन में टहलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। सबकी ज़िंदगी बदल गई, एक नए सिरे से ढल गई। किसी को नौकरी से फुर्सत नहीं, किसी को दोस्तों की ज़रूरत नहीं। सारे यार गुम हो गए, तुम से तुम और तुम से आप हो गए। मैं गुजरे पल को सोचूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। धीरे धीरे उम्र कट जाती है, जीवन यादों की पुस्तक बन जाती है। कभी किसी की याद बहुत तड़पाती है और कभी यादों के सहारे जिंदगी कट जाती है। किनारों पे सागर के खजाने नहीं आते, फिर जीवन में दोस्त पुराने नहीं आते। जी लो इन पलों को हंस के दोस्त, फिर लौट के दोस्ती के जमाने नहीं आते। मैं यादों का किस्सा खोलूं तो कुछ दोस्त बहुत याद आते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है।

वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस. ये है पक्का बनारस.

0: ही चोट लग गई है, इतनी रात गए मैं इन्हें किस अस्पताल लेकर जाऊं?
1: इन्हें लेकर जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़हूपुर, जहां MCH न्यूरो सर्जन डॉक्टर विजय कुमार और उनकी टीम 24 घंटे तैयार रहती है, जहां पर है CT स्कैन, मॉड्यूलर OT, एडवांस माइक्रोस्कोपिक मशीनरी, जिससे बड़े से बड़ा जटिल ऑपरेशन भी अब एक ही छत के नीचे संभव है। और वहां पर आयुष्मान कार्ड, दीनदयाल, TPA और हर तरह की कैशलेस सुविधा है। तो बहन जी आप चिंता मत करो, आप जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़हूपुर।
2: न्यूरो से संबंधित सभी समस्याओं का इलाज पाएं 24/7 मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़हूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। कॉन्टैक्ट 9628888824 या फिर 9838501702।

0: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
1: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
0: अरे बेटा,
1: ये क्या कर रहे हो अंकल?
0: अरे सुनो
1: गलत
0: तो,
1: है ये।
0: अरे सुनो बेटा
1: अंकल।
2: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 एफएम हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
3: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
4: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
5: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
4: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
6: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8 सारंग तालाब चौराहा पंचकोसी रोड वाराणसी।
7: जब स्वच्छता की होगी बात तभी सुधरेगा घर परिवार,
8: क्योंकि 91.2 FM हेलो बनारस आपके लिए लेकर आ रहा है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी, जिसमें मैं स्वच्छिका
7: और मैं सुजल आपको देंगे जानकारी की भरमार।
8: तो सुनना ना भूले, जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम ठीक शाम 5 बजे से।
9: यूपी को मिली ग्लोबल पहचान, निवेश का बना पसंदीदा स्थान, यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सिंगापुर और जापान यात्रा से यूपी में वैश्विक निवेश का बड़ा द्वार खुल गया है।
10: सिंगापुर एवं जापान यात्रा में रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर हुए, साथ ही 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।
9: ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर रेडी सेक्टर्स का हब बनने की ओर अग्रसर यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा से रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे।
10: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
11: अरे बहन इतनी परेशान क्यों हो?
12: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
11: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीड़ फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
13: कट मारा है, मजा ही आ गया।
14: अरे अरे अरे कैसे बेशरम लोग हो गए हैं, बाइक तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे नागिन।
15: अरे भाई और तेज भागा।
2: आपकी एक भूल आप पर भारी पड़ सकती है। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स का पालन करें, खुद को और अपने साथ सड़क पर चलने वालों को सुरक्षित रखें। 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।

0: हिट्स ऑन, इसकी है वाइब स्ट्रॉन्ग। अब सुनिए इवनिंग गपशप आरजे अमीशा के साथ, मंडे टू फ्राइडे शाम 6 से 9, ओनली ऑन 91.2 FM। हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
1: इवनिंग गपशप
2: 91.2 FM। हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
3: पक्का बनारसी।
4: Hello, Banaras. 91.2 FM. Hello, Banaras.
5: Hello, Banaras.

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।

आरसी बातें एंड चिल वाइब्स वीकडेज पर नया पार लगाएगा हमारा मॉर्निंग ड्राइव. ट्यून इन मॉर्निंग ड्राइव विद आरजे सुधांशु मंडे टू फ्राइडे 9 AM to 12 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस. ये है

0: nothing. What a busy day.
1: डॉक्टर साहब, जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ तो मेरे पीठ बहुत दर्द करती है, मैं क्या करूँ?
0: देखो यार, जब सुबह उठने से पीठ दर्द करती है तो तुम शाम को उठा करो भाई। 91.2 हेलो बनारस पे, ये थे डॉक्टर लाठी। ऐसी मेरी सी आवाज में कौन प्रमोशन करता है भाई?
2: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी, पक्का बनारसी।
3: पंक्ति यात्रा, कहीं छत थी दीवारों धर थे कहीं, मिला मुझको घर का पता देर से, दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे, मगर जो दिया वो दिया देर से, हुआ ना कोई काम मामूल से, गुजरे शबो रोज कुछ इस तरह, कभी चांद चमका गलत वक्त पर, कभी घर में सूरज उगा देर से, कभी रुक गए राह में भी सबब, कभी वक्त से पहले घिर आई शब, हुए बंद दरवाजे खुल खुल के सब, जहां भी गया मैं गया देर से, ये सब इत्तफाकात का खेल है, यही है जुदाई यही मेल है, मैं मुड़ मुड़ के देखा किया दूर तक, बनी वो खामोशी सदा देर से, सजा दिन भी रोशन हुई रात भी, भरे जाम लगराई बरसात भी, रहे साथ कुछ ऐसे हालात भी, जो होना था जल्दी हुआ देर से, भटकती रही यूं ही हर बंदगी, मिली ना कहीं से कोई रोशनी, छुपाता कहीं भीड़ में आदमी, हुआ मुझ में रोशन खुदा देर से। प्रस्तुत पंक्तियां निदा फाजली द्वारा रचित है।
2: 91.2 FM हेलो बनारस,
4: हेलो बनारस।
5: चोट लग गई है, इतनी रात गए, मैं इन्हें किस अस्पताल लेकर जाऊं?
6: इन्हें लेकर जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़हूपुर, जहां MCH न्यूरो सर्जन डॉक्टर विजय कुमार और उनकी टीम 24 घंटे तैयार रहती है, जहां पर है CT स्कैन, मॉड्यूलर OT, एडवांस माइक्रोस्कोपिक मशीनरी, जिससे बड़े से बड़ा जटिल ऑपरेशन भी अब एक ही छत के नीचे संभव है। वहां पर आयुष्मान कार्ड, दीनदयाल, TPA और हर तरह की कैशलेस सुविधा है। तो बहन जी, आप चिंता मत करो, आप जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़हूपुर।
7: न्यूरो से संबंधित सभी समस्याओं का इलाज पाएं 24/7 मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़हूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। कॉन्टैक्ट 9628888824 या फिर 9838501702।
8: बेटा, काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
9: अंकल, आती हूँ अंकल। अरे
8: अरे बेटा,
9: ये क्या कर रहे हो अंकल?
8: सुनो,
9: गलत है ये।
8: अरे सुनो बेटा,
9: अंकल।
10: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
11: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़ूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259100 या 8004901248 पर।
12: जब स्वच्छता की होगी बात, तभी सुधरेगा घर परिवार,
7: क्योंकि 91.2 FM हेलो बनारस आपके लिए लेकर आ रहा है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की।

0: स्वच्छिका
1: और मैं सुजल आपको देंगे जानकारी की भरमार।
0: तो सुनना ना भूले, जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम ठीक शाम 5 बजे से।
2: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
3: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
2: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
4: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8 सारंग तालाब चौराहा पंचकोसी रोड वाराणसी।
5: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
6: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
5: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मरीडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मरीडियन हॉस्पिटल लेडूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
7: 91.2 FM, हेलो बनारस।
8: पार्टी की भीड़ भाड़ के बाद रास्ते का ये सुनापन कितना अच्छा लग रहा
9: है। ये आपके लिए छोटी सी भेंट है, आपके जन्मदिन के शुभ अवसर पर। वहाँ सबके सामने देने में संकोच हो रहा था।
8: ये मेरे लिए सबसे अमूल्य भेंट है क्योंकि तुमने मुझे दी। माफ कीजिए, मैं तुम कहेगा आपको।
9: अपने से छोटों को हमेशा तुम ही कहा जाता है, और फिर तुम में जो अपनापन है वो आप में नहीं।
8: आज मैंने तुमसे एक नई बात सीखी है पूनम। अपनेपन के लिए किसी को अपना बनाना जरूरी नहीं, जिससे भी अपनापन मिल जाए।

0: अपनी आंखों से ना देखता तो कभी यकीन ना होता। यही कि आपको हंसना खेलना भी आता।
1: सपने जिद की, इसलिए खेलना पड़ा। कुछ देर के लिए सब कुछ भूल के इस पागलपन में।
0: पागलपन? खुशी तो मन की तरंग होती है, उसे कोई रोकना भी चाहे तो रोक नहीं सकता।
1: कमल बाबू, कविता से मन को बहलाया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। जिस मन को दुर्भाग्य ने और समाज के बंधनों ने कुचल डाला हो, उसे झूठा दिलासा देने से क्या फायदा।
0: आप मन की शक्ति को नहीं जानती। जिस मन में सच्ची भावना हो, लगन हो, वो एक बंधन को तोड़ सकता है।
1: और जिसके मन में न कोई उमंग हो, न कोई तरंग हो, जिसका जीवन एक कटी पतंग की तरह हो। आप ही के कविता के शब्द हैं।
0: वो मेरी अधूरी कविता है।
1: पूरी होकर भी कटी पतंग का भाग्य नहीं बदल सकती। जो एक बार अपनी डोर से कट गई, उसे दुख के थपेड़े न जाने कहां से कहां ले जाए। उसकी ना तो कोई दिशा है, ना कोई मंजिल।
0: जोड़े में लगाते लगाते थैंक यू दिया।
1: मैं तो यूं ही देख रही थी।
0: फूल दो ही जगह शोभा देता है, एक भगवान के चरणों में, दूसरा स्त्री के जूड़े में।
1: हर स्त्री के जूड़े में नहीं।
0: एक बात पूछो पूनम।
1: पूछिए।
0: थोड़ी देर पहले तुम हंस खेल रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे तुम्हारा बीता हुआ जीवन इस झरने की तरह है, उमंग भरा।
1: लेकिन आज
0: इस झील की तरह है जो ऊपर से शांत है, लेकिन इसकी गहराई में न जाने कितने अरमान मचल रहे हैं। पूनम, दुनिया में झील की गहराइयां ही सब कुछ नहीं, और भी बहुत कुछ है। जैसे जैसे ये फूल जो मुस्कुराहट देते हैं
1: और मुरझा भी जाते हैं,
0: जैसे ये शाम जो मस्ती लुटाती है
1: और रात के अंधेरे में खो जाती है।
0: पूनम, अगर तुम चाहो तो इस रात के अंधेरे से निकलकर आकाश के उजाले को छू सकती हो।
1: इसके लिए मजबूत हाथों के सहारे की जरूरत होती है।
0: पवित्र प्रेम ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है पूनम।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: हे भगवान, सर में इनके इतनी चोट लग गई है, इतनी रात गए, मैं इन्हें किस अस्पताल लेकर जाऊं?
3: इन्हें लेकर जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़हूपुर, जहां MCH न्यूरो सर्जन डॉक्टर विजय कुमार और उनकी टीम 24 घंटे तैयार रहती है, जहां पर है CT स्कैन, मॉड्यूलर OT, एडवांस माइक्रोस्कोपिक मशीनरी, जिससे बड़े से बड़ा जटिल ऑपरेशन भी अब एक ही छत के नीचे संभव है। वहां पर आयुष्मान कार्ड, दीनदयाल, TPA और हर तरह की कैशलेस सुविधा है। तो बहन जी, आप चिंता मत करो, आप जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़हूपुर।
4: न्यूरो से संबंधित सभी समस्याओं का इलाज पाएं 24/7 मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़हूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। कॉन्टैक्ट 9628888824 या फिर 9838501702।
5: पंक्ति यात्रा। कहीं छत थी, दीवारों धर थे, कहीं मिला मुझको घर का पता देर से। दिया तो बहुत जिंदगी ने मुझे, मगर जो दिया वो दिया देर से। हुआ ना कोई काम मामूल से, गुजरे शबो रोज कुछ इस तरह। कभी चांद चमका गलत वक्त पर, कभी घर में सूरज उगा देर से। कभी रुक गए राह में भी सबब, कभी वक्त से पहले घिर आई शब। हुए बंद दरवाजे खुल खुल के सब, जहां भी गया मैं गया देर से। ये सब इत्तफाकात का खेल है, यही है जुदाई यही मेल है। मैं मुड़ मुड़ के देखा किया दूर तक, बनी वो खामोशी सदा देर से। सजा दिन भी रोशन हुई रात भी, भरे जाम लगराई बरसात भी। रहे साथ कुछ ऐसे हालात भी, जो होना था जल्दी हुआ देर से। भटकती रही यूं ही हर बंदगी, मिली ना कहीं से कोई रोशनी। छुपाता कहीं भीड़ में आदमी, हुआ मुझ में रोशन खुदा देर से। प्रस्तुत पंक्तियां निदा फाजली द्वारा रचित है।
0: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
1: पक्का बनारसी।
6: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
7: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
6: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़हूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
8: बेटा, काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
9: अंकल, आती हूँ अंकल। अरे
8: अरे बेटा,
9: ये क्या कर रहे हो अंकल? गलत है ये।
8: अरे सुनो बेटा।
9: अंकल,
10: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
11: जब स्वच्छता की होगी बात, तभी सुधरेगा घर परिवार,
12: क्योंकि 91.2 FM हेलो बनारस आपके लिए लेकर आ रहा है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जिसमें मैं स्वच्छिका
11: और मैं सुजल आपको देंगे जानकारी की भरमार।
12: तो सुनना ना भूले, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम ठीक शाम 5 बजे से।
13: सेवानिर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़ूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259100 या 8004901248 पर।
14: यूपी को मिली ग्लोबल पहचान, निवेश का बना पसंदीदा स्थान। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सिंगापुर और जापान यात्रा से यूपी में वैश्विक निवेश का बड़ा द्वार खुल गया है।
15: सिंगापुर एवं जापान यात्रा में रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर हुए, साथ ही 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।
14: ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर रेडी सेक्टर्स का हब बनने की ओर अग्रसर यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी की यात्रा से रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे।
15: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
16: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
17: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी।
16: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
18: है ना। मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8 सारंग तालाब चौराहा पंचकोसी रोड वाराणसी।
19: क्या कट मारा है, मजा ही आ गया।
20: अरे अरे अरे कैसे बेशरम लोग हो गए हैं, बाइक तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे नागिन।
21: अरे भाई और तेज भागा।
22: आपकी एक भूल आप पर भारी पड़ सकती है। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स का पालन करें, खुद को और अपने साथ सड़क पर चलने वालों को सुरक्षित रखें। 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
0: 91.2 FM हेलो बनारस पक्का बनारसी।

0: मनुष्य, नर्क जाने से पहले तेरी कोई आखिरी इच्छा?
1: महाराज, अब क्या ही बताएं, जिंदगी भर पत्नी की सुनते आए हैं, अब अपनी आखिरी समय में 91.2 हेलो बनारस सुनना चाहता हूँ।
0: चित्रगुप्त, इस मनुष्य की आखिरी इच्छा पूरी की जा रही।
1: ड्रो आज्ञा महाराज।
0: चित्रगुप्त, ये कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा?
1: महाराज, इस डिब्बे को दीजिए तोड़ और 91.2 FM हेलो बनारस के ऐप को कीजिए डाउनलोड और हो जाइए मनुष्यों की तरह डिजिटल।
2: जी हाँ, अगर आप भी इनकी तरह देश और दुनिया के किसी भी कोने में 91.2 FM हेलो बनारस सुनना चाहते हैं, तो आज ही प्ले स्टोर पर या फिर एप्पल स्टोर पर जाएं और 91.2 FM हेलो बनारस की ऐप को इंस्टॉल करें।
3: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
4: पक्का बनारसी।
5: 91.2 FM हेलो बनारस,
6: हेलो बनारस।
7: 91.2 FM हेलो बनारस पे आ गए हैं डॉक्टर नाथी। व्हाट अ बिजी डे।
8: डॉक्टर साहब, मैं भी समय के साथ चलना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ?
7: दिस इज वेरी टाइम मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन। देखो यार, तुम ऐसा करो, तुम अपने दोनों पैरों में घड़ी बांध लो, उसके बाद तुम भी समय के साथ चलना सीख जाओगे भाई।
9: 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी।
7: ऐसी मेरी सी आवाज में कौन परमिशन करता है भाई?
3: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
4: पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: हे भगवान, सर में इनके इतनी चोट लग गई है, इतनी रात गए, मैं इन्हें किस अस्पताल लेकर जाऊं?
3: इन्हें लेकर जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़हूपुर, जहां MCH न्यूरो सर्जन डॉक्टर विजय कुमार और उनकी टीम 24 घंटे तैयार रहती है, जहां पर है CT स्कैन, मॉड्यूलर OT, एडवांस माइक्रोस्कोपिक मशीनरी, जिससे बड़े से बड़ा जटिल ऑपरेशन भी अब एक ही छत के नीचे संभव है। और वहां पर आयुष्मान कार्ड, दीनदयाल, TPA और हर तरह की कैशलेस सुविधा है। तो बहन जी, आप चिंता मत करो, आप जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़हूपुर।
4: न्यूरो से संबंधित सभी समस्याओं का इलाज 24/7 मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़हूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। कॉन्टैक्ट 9628888824 या फिर 9838501702।
5: पंक्ति यात्रा। दिले नादान, तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? मैं भी मुंह में जबान रखता हूँ, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ लगे तो बुरा क्या है। प्रस्तुत पंक्तियाँ मिर्जा बेग असदुल्ला खान मिर्जा गालिब की है।
6: अब अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स को दीजिए नई पहचान। डिजिटल और रेडियो के जरिए अपने बिजनेस को पहुंचाएं लाखों लोगों तक। किसी भी तरह के एडवर्टीजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें हेलो बनारस 91.2 FM से। कॉन्टैक्ट 9125136000 या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9839912912 पर। आप हमसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टा हैंडल है हेलो बनारस FM। जल्दी कीजिए, आपकी तरक्की हमारा प्रयास।
7: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
8: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
7: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़हूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
3: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
2: अरे बेटा,
3: ये क्या कर रहे हो अंकल?
2: सुनो
3: गलत है ये।
2: अरे सुनो बेटा
3: अंकल।
4: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
5: जब स्वच्छता की होगी बात, तभी सुधरेगा घर परिवार,
6: क्योंकि 91.2 FM हेलो बनारस आपके लिए लेकर आ रहा है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जिसमें मैं स्वच्छिका
5: और मैं सुजल आपको देंगे जानकारी की भरमार।
6: तो सुनना ना भूले, जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम ठीक शाम 5 बजे से।
7: सेवानिर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
8: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
9: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
8: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
10: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।

0: लाइट्स ऑन, इसकी है वाइब स्ट्रॉन्ग। अब सुनिए इवनिंग गपशप आरजे अमीशा के साथ, मंडे टू फ्राइडे शाम 6 से 9, ओनली ऑन 91.2 एफएम। हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
1: इवनिंग गपशप
2: 91.2 एफएम, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
3: पक्का बनारसी।
4: 91.2 एफएम हेलो बनारस पे आ गए हैं डॉक्टर लाठी। ओहो हो, व्हाट अ बिजी डे।

0: साहब, मैं भी समय के साथ चलना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ?
1: दिस इज वेरी टाइम मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन। देखो यार, तुम ऐसा करो, तुम अपने दोनों पैरों में घड़ी बांध लो, उसके बाद तुम भी समय के साथ चलना सीख जाओगे भाई। 91.2 हेलो बनारस पे, ये थे डॉक्टर लाठी। ऐसी मेरी सी आवाज में कौन प्रमोशन करता है भाई।

0: पंक्ति यात्रा।
1: मैं चुप शांत और अडोल खड़ी थी, सिर्फ पास बहते समुद्र में तूफान था। फिर समुद्र को खुदा जाने क्या ख्याल आया, उसने तूफान की एक पोटली सी बांधी, मेरे हाथों में थमाई और हंसकर कुछ दूर हो गया। हैरान थी पर उसका चमत्कार ले लिया। पता था कि इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है। लाखों ख्याल आए, माथे में झिलमिलाए, पर खड़ी रह गई कि उसको उठाकर अब अपने शहर में कैसे जाऊंगी। मेरे शहर की हर गली सकरी, मेरे शहर की हर छत नीची, मेरे शहर की हर दीवार चुगली। सोचा कि अगर तू कहीं मिले तो समुद्र की तरह इसे छाती पर रखकर हम दो किनारों की तरह हंस सकते थे और नीची छतों और सकरी गलियों के शहर में बस सकते थे। पर सारी दोपहर तुझे ढूंढती भी थी और अपनी आँख का मैंने आप ही घूंट पिया। मैं अकेला किनारा किनारे को गिरा दिया और जब दिन ढलने को था समुद्र का तूफान समुद्र को लौटा दिया। अब रात घिरने लगी तो तू मिला है, तू भी उदास चुप शांत और अडोल, मैं भी उदास चुप शांत और अडोल, सिर्फ दूर बहते समुद्र में तूफान है।
0: प्रस्तुत पंक्तियां अमृता प्रीतम द्वारा।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
3: बॉलीवुड की गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
4: नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो हेलो बनारस 91.2 FM और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु, और चल रहा है हमारा शो पर्दे के पीछे। आज हम बात करेंगे सिंगर कट्टासेरी जोसेफ यसुदास के बारे में। इनका जन्म हुआ 1940 में केरल के कोच्ची में। इन्होंने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली। यशुदास ने लगभग 14 से अधिक भाषाओं में गाने गाए हैं, जिसमें ज्यादातर मलयालम, तमिल, तेलुगु, हिंदी, कन्नड़, बंगाली, संस्कृत और भी कई हैं। और अगर हम पुरस्कार की बात करें तो इन्हें 8 बार नेशनल फिल्म अवार्ड मिल चुका है, जो कि अब तक मेल सिंगर्स की अगर हम बात करें, मेल प्लेबैक सिंगर्स की, तो अभी तक का ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। अभी तक कोई इसे तोड़ नहीं पाया है। बातें अभी और भी चलेंगी हमारी इस शो में, जिसका नाम है पर्दे के पीछे। हेलो बनारस 91.2 FM, पक्का बनारसी।

0: बॉलीवुड की ऐसी कौन सी हीरोइन है जिनकी चर्चाएं विदेश तक है।
1: पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा।
0: ऐसा क्या हुआ कि सलीम और जावेद जी के बीच में दरार आ गई।
2: बॉलीवुड की गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
3: नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है रेडियो हेलो बनारस। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु। बात चल रही है पर्दे के पीछे, जिसमें हमारी आज चर्चा हो रही है कट्टा सेरी जोसेफ यसुदास के बारे में। जी हाँ, वही प्लेबैक सिंगर जिन्होंने अब तक 85 इयर्स की एज में कुल 70,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड कराए हैं, जिनमें 14 से अधिक भाषाओं में इनके गाए हुए गाने हैं। इन्होंने पद्मश्री पुरस्कार 1975 में और पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2017 में मिल चुका है। और अगर हम संगीत शैली की बात करें यसुदास के, तो इन्होंने शास्त्रीय भक्ति गीत और फिल्मी गीत के ऊपर इतने ज्यादा गाने गाए हैं, और साथ ही भजन में इनकी इतनी प्रवीणता है कि हरिवरासनम इनका जो भजन है सबरीमाला मंदिर में रोज शाम को बजाया ही जाता है। बातें अभी और भी होंगी, आप सुनते रहिए रेडियो हेलो बनारस 91.2 FM पर पक्का बनारसी।

0: बॉलीवुड की ऐसी कौन सी हीरोइन है जिनकी चर्चाएं विदेश तक है?
1: पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा।
0: ऐसा क्या हुआ कि सलीम और जावेद जी के बीच में दरार आ गई?
2: बॉलीवुड के गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
3: नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु और प्रोग्राम चल रहा है हमारा हेलो बनारस पर पर्दे के पीछे, जिसमें हम बात कर रहे हैं पर्दे के पीछे कट्टासेरी जोसेफ यसुदास के बारे में, जो केरल के कोच्चि में 1940 में पैदा हुए और 1961 में इनकी पहली फिल्म एज ए सिंगर रिलीज हुई, जिसका नाम था कल्प दुकल। इनकी आवाज में जो गाना रिकॉर्ड हुआ उसने इनके लिए एक अलग माइलस्टोन देने की कोशिश की। जी हाँ, इसी गाने के कारण ही यसुदास यसुदास बन गए और लोगों के दिलों पर आज तक राज कर रहे हैं। ये गीत सामाजिक संदेश देने वाला नारायण गुरु के विचारों से प्रेरित था, जो जाति भेद धार्मिक भेदभाव से बिल्कुल अलग था। और ये गाना यसुदास की आवाज में इतना ज्यादा लोकप्रिय हुआ कि उनके करियर का पहला और जबरदस्त माइलस्टोन बन गया। और इसी गाने के कारण यसुदास को इंडस्ट्री में एक अपनी नई पहचान मिली। बातें अभी और भी होंगी यसुदास के बारे में इस पर्दे के पीछे, सिर्फ 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: बॉलीवुड की ऐसी कौन सी हीरोइन है जिनकी चर्चाएं विदेश तक है?
1: पर्दा जो उठ गया तो भी खुल जाएगा।
0: ऐसा क्या हुआ कि सलीम और जावेद जी के बीच में दरार आ गई?
2: बॉलीवुड की गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
3: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त और होस्ट सुधांशु और हमारा शो चल रहा है पर्दे के पीछे सिर्फ 91.2 FM हेलो बनारस पर। आज हम बात कर रहे हैं पर्दे के पीछे में कट्टा सिरी जोसेफ यसुदास की, जिन्होंने 14 से अधिक भाषाओं में गाने गाए, लेकिन उनका जो बॉलीवुड में एंट्री थी वो थी फिल्म छोटी सी बात 1976 में आई, और इस गीत के बोल थे जाने मन तेरे दो नया। जी हाँ, छोटी सी बात मूवी, रिलीजिंग डेट 1976, संगीतकार सलील चौधरी और उनके साथ जो फीमेल वॉइस थी वो थी आशा भोसले जी की, और फिल्माया गया था अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा जी पर। और ये गाना यशुदास जी को बॉलीवुड में बहुत ऊंचाई तक पहले फिल्म में ही पहुंचा दिया, और इतना रोमांटिक सॉन्ग था कि हिंदी सिनेमा में यशुदास की जब शुरुआत हुई तो इसको बहुत ज्यादा दर्शकों का प्यार मिला और श्रोताओं का भी बहुत प्यार मिला। इसके बाद तो जैसे बहार आ गई, जो भी रोमांटिक सॉन्ग होता था उसमें सीधा और सीधा यशुदास जी को ही पकड़ा जाता। इसके बाद उन्होंने और भी कई गाने गाए जो सारे रोमांटिक थे, जैसे गोरी का गांव बड़ा प्यारा, सुरमई अखियों में। वैसे 1940 में जन्मे हुए यशुदास जी का 2025 तक का ये सफर अनवरत जारी है, और बाबा भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि वो इसी तरह से सुपर डुपर हिट गाने देते रहें, जिससे उनकी जो गाना गाने की जो श्रृंखला 70,000 है वो इससे भी ज्यादा बढ़े। अगली बार हम होंगे आपके साथ एक नए पर्दे के पीछे में स्टोरी लेकर के। तब तक आप सुनते रहिए 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259100 या 8004901248 पर।
2: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
3: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
2: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
4: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8 सारंग तालाब चौराहा पंचकोसी रोड वाराणसी।
5: अरे बहन इतनी परेशान क्यों हो?
6: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
5: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
7: जब स्वच्छता की होगी बात तभी सुधरेगा घर परिवार,
8: क्योंकि 91.2 FM हेलो बनारस आपके लिए लेकर आ रहा है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी, जिसमें मैं स्वच्छिका
7: और मैं सुजल आपको देंगे जानकारी की भरमार।
8: तो सुनना ना भूले, जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम ठीक शाम 5 बजे से।
9: चोट लग गई है, इतनी रात गए, मैं इन्हें किस अस्पताल लेकर जाऊं?
10: इन्हें लेकर जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़ूपुर, जहां MCH न्यूरो सर्जन डॉक्टर विजय कुमार और उनकी टीम 24 घंटे तैयार रहती है, जहां पर है CT स्कैन, मॉड्यूलर OT, एडवांस माइक्रोस्कोपिक मशीनरी, जिससे बड़े से बड़ा जटिल ऑपरेशन भी अब एक ही छत के नीचे संभव है। और वहां पर आयुष्मान कार्ड, दीनदयाल, TPA और हर तरह की कैशलेस सुविधा है। तो बहन जी आप चिंता मत करो, आप जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़ूपुर,
5: न्यूरो से संबंधित सभी समस्याओं का इलाज पाएं 24/7 मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़ूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। कॉन्टैक्ट 9628888824 या फिर 9838501702।

0: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।
2: बिना बातों के जिंदगी कुछ ऐसी लगती है
3: जैसे संगीत बिना गीत के,
2: फिर बातों के साथ जिंदगी कुछ ऐसी हो जाती है
3: जैसे धुन को अल्फाज मिल गए।
4: कुछ बातें कहीं सुनी है, कुछ गानों में घुली हुई सी है,
2: पर आप खो मत जाना क्योंकि वापस यही है आना।
5: सुनिए बातें कुछ अनकही सी, शनिवार और रविवार रात 8 से 10 ओनली ऑन 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
6: 91.2 FM, हेलो बनारस पे आ गए हैं डॉक्टर नाथी। व्हाट अ बिजी डे।
7: डॉक्टर साहब, दुनिया में सबसे ज्यादा सोना कहाँ है?
6: That's very bedrest type question. As a doctor, I would say, जहाँ गद्दा और तकिया मिल जाए वहीं सबसे ज्यादा सोना हो जाएगा यार।
8: Stupid.
6: मुझे तो गद्दे की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो अपने टॉमी के बगल में सो जाता हूँ, है ना टॉमी? 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी। ऐसी मेरी सी आवाज में कौन प्रमोशन करता है भाई?
9: Hello, Banaras.
10: Hello, Banaras.

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: पीजिएगा सरकार।
1: नो थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

वहम गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: की यात्रा।
1: लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
2: प्रस्तुत पंक्तियाँ सोहन लाल त्रिवेदी द्वारा रचित है।
0: पंक्ति यात्रा।
3: हे भगवान, सर में इनके इतनी चोट लग गई है, इतनी रात गए, मैं इन्हें किस अस्पताल लेकर जाऊँ?
4: इन्हें लेकर जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़हूपुर, जहाँ MCH न्यूरो सर्जन डॉक्टर विजय कुमार और उनकी टीम 24 घंटे तैयार रहती है। जहाँ पर है CT स्कैन, मॉड्यूलर OT, एडवांस माइक्रोस्कोपिक मशीनरी, जिससे बड़े से बड़ा जटिल ऑपरेशन भी अब एक ही छत के नीचे संभव है। और वहाँ पर आयुष्मान कार्ड, दीनदयाल, TPA और हर तरह की कैशलेस सुविधा है। तो बहन जी, आप चिंता मत करो, आप जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़हूपुर।
5: न्यूरो से संबंधित सभी समस्याओं का इलाज 24/7 मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़हूपुर वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता। कॉन्टैक्ट 9628888824 या फिर 9838501702।
6: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
1: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मरीडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मरीडियन हॉस्पिटल, लेडूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
3: बेटा, काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
4: अंकल, आती हूँ अंकल। अरे
3: अरे बेटा,
4: ये क्या कर रहे हो अंकल?
3: अरे सुनो,
4: गलत है ये।
3: अरे सुनो बेटा।
4: अंकल,
5: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
6: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
7: अरे मंजू, गुड़िया को कुदाल लेकर कहाँ भेज रही हो?
8: अरे मास्टरनी जी, घर गांव का काम धंधा नहीं सीखेगी तो ससुराल में गुजारा कैसे होगा?
7: अरे मंजू, देश और समाज पढ़ लिख कर आगे बढ़ रहा है और तुम हो कि अभी तक ससुराल में ही अटकी पड़ी हो। अब लड़का हो या लड़की, सब पढ़ेंगे एक साथ और गढ़ेंगे नया इतिहास, क्योंकि बनारस में खुल गया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल, जहां मिलती है कम फीस में बेहतर और अच्छी पढ़ाई।
8: ठीक है मास्टर निजी, मैं आज ही गुड़िया का दाखिला दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में कराती हूँ।
7: ये की ना अच्छी बात।
9: अगर आप भी देखना चाहते हैं अपने बच्चों में नई उड़ान, तो आज ही एडमिशन कराएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोशी रोड, पांडेपुर, वाराणसी।
10: जब स्वच्छता की होगी बात, तभी सुधरेगा घर परिवार,
1: क्योंकि 91.2 FM हेलो बनारस आपके लिए लेकर आ रहा है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जिसमें मैं स्वच्छिका
10: और मैं सुजल आपको देंगे जानकारी की भरमार।
1: तो सुनना ना भूले, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम ठीक शाम 5 बजे से।
11: क्या कट मारा है, मजा ही आ गया।
12: अरे अरे अरे, कैसे बेशरम लोग हो गए हैं, बाइक तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे नागिन।
13: अरे भाई और तेज भागा।
5: आपकी एक भूल आप पर भारी पड़ सकती है। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स का पालन करें, खुद को और अपने साथ सड़क पर चलने वालों को सुरक्षित रखें। 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइट्स ऑन, इसकी है वाइब स्ट्रॉन्ग। अब सुनिए इवनिंग गपशप आरजे अमीशा के साथ, मंडे टू फ्राइडे शाम 6 से 9, ओनली ऑन 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
1: इवनिंग गपशप
2: 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: हेलो बनारस।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पंक्ति यात्रा, मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहां, कैसे, पता नहीं, शायद तेरे कल्पनाओं की प्रेरणा बन तेरे कैनवस पर उतरूंगी, या तेरी कैनवस पर एक रहस्यमयी लकीर बन खामोश तुझे देखती रहूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहां, कैसे, पता नहीं, या सूरज की लौ बनकर तेरे रंगों में घूमती रहूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तेरे कैनवस पर बिछ जाऊंगी। पता नहीं कहां, किस तरह, पर तुझे जरूर मिलूंगी। या फिर एक चश्मा बनी जैसे झरने से पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदें तेरे बदन पर मलूंगी और एक शीतल एहसास बनकर तेरे सीने से लगूंगी। मैं और तो कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा यह जन्म मेरे साथ चलेगा। यह जिस्म खत्म होता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर यादों के धागे कायनात के लम्हे की तरह होता है। मैं उन लम्हों को चुनूंगी, उन धागों को समेट लूंगी। मैं तुझे फिर मिलूंगी। कहां, कैसे, पता नहीं, मैं तुझे फिर मिलूंगी। प्रस्तुत पंक्तियां अमृता प्रीतम द्वारा रचित है।
2: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी, पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, Pakka Banarsi.
1: Pakka Banarsi.
2: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
3: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
2: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मरीडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मरीडियन हॉस्पिटल, लेडूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
4: बेटा, काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
5: अंकल, आती हूँ अंकल। अरे
4: अरे बेटा,
5: ये क्या कर रहे हो अंकल?
4: अरे सुनो
5: गलत
4: तो,
5: है ये।
4: अरे सुनो बेटा
5: अंकल।
6: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
0: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
1: पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।
2: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259100 या 8004901248 पर।
3: जब स्वच्छता की होगी बात, तभी सुधरेगा घर परिवार,
4: क्योंकि 91.2 FM हेलो बनारस आपके लिए लेकर आ रहा है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जिसमें मैं स्वच्छिका
3: और मैं सुजल आपको देंगे जानकारी की भरमार।
4: तो सुनना ना भूले, जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम ठीक शाम 5 बजे से।
5: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
6: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
5: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
7: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।

0: बिहार के शान भोजपुरी आलोगन के जान आप सब खातिर हम ले आयल बानी भोजपुरी तड़का, जहां आप सबन के मिली भोजपुरी के हर मिठास से भरल खाटी भोजपुरी गाना। तो आज आई हमने के साथ सुनत रहे 91.2 FM हेलो बनारस पर रोज सांझे 4 से 5 बजे भोजपुरी तड़का, हमार भोजपुरी हमार गौरव।
1: 91.2 FM हेलो बनारस पक्का बनारसी।

0: हिट्स ऑन, इसकी है वाइब स्ट्रॉन्ग। अब सुनिए इवनिंग गपशप आरजे अमीशा के साथ, मंडे टू फ्राइडे शाम 6 से 9, ओनली ऑन 91.2 एफएम। हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
1: इवनिंग गपशप
2: 91.2 एफएम, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: हेलो दीदी सुनो ना, सब्जी दाल बनावे के बा हमके। हमरा तनिको मालूम नहीं कि कैसे बनी।
1: कौनो बात नहीं के, सुनो एगो काम कर।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।

0: साथी। व्हाट अ बिजी डे।
1: डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी रोज मुझसे घर के सारे बर्तन धुलवाती है, मैं क्या करूं?
0: व्हाट अ पीपीपी। पत्नी पीड़ित पति। देखो यार, तुम ये सब करने के लिए 3-4 घर और पकड़ लो, बढ़िया स्टार्टअप हो जाएगा भाई।
2: 91.2 हेलो बनारस पे, ये थे डॉक्टर लाठी।
0: ऐसी मेरी सी आवाज में कौन प्रमोशन करता है भाई।
3: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी, पक्का बनारसी।
4: मनुष्य, नर्क जाने से पहले तेरी कोई आखिरी इच्छा?
5: महाराज, अब क्या ही बताएं, जिंदगी भर पत्नी की सुनते आए हैं, अब अपनी आखिरी समय में 91.2 हेलो बनारस सुनना चाहता हूँ।
4: चित्रगुप्त, इस मनुष्य की आखिरी इच्छा पूरी की जा रही।
5: जो आज्ञा महाराज।
4: चित्रगुप्त, ये कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा?
5: महाराज, इस डिब्बे को दीजिए तोड़ और 91.2 FM हेलो बनारस के ऐप को कीजिए डाउनलोड और हो जाइए मनुष्यों की तरह डिजिटल।
6: जी हाँ, अगर आप भी इनकी तरह देश और दुनिया के किसी भी कोने में 91.2 FM हेलो बनारस सुनना चाहते हैं, तो आज ही प्ले स्टोर पर या फिर एप्पल स्टोर पर जाएं और 91.2 FM हेलो बनारस की ऐप को इंस्टॉल करें।
3: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
7: पक्का बनारसी।
3: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
7: पक्का बनारसी।

0: 91.2 FM. Hello Banaras, पक्का बनारसी,
1: पक्का बनारसी।
2: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
3: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
2: अरे बेटा,
3: ये क्या कर रहे हो अंकल?
2: अरे सुनो
3: गलत
2: तो,
3: है ये।
2: अरे सुनो बेटा
3: अंकल।
4: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
5: अरे बहन इतनी परेशान क्यों हो?
6: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
5: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मरीडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मरीडियन हॉस्पिटल, लेडूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
2: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
1: अरे आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
3: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8 सारंग तालाब चौराहा पंचकोसी रोड वाराणसी।
4: जब स्वच्छता की होगी बात तभी सुधरेगा घर परिवार,
5: क्योंकि 91.2 FM हेलो बनारस आपके लिए लेकर आ रहा है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी, जिसमें मैं स्वच्छिका
4: और मैं सुजल आपको देंगे जानकारी की भरमार।
5: तो सुनना ना भूले, जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम ठीक शाम 5 बजे से।
6: सेवानिर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
7: क्या खट मारा है, मजा ही आ गया।
8: अरे अरे अरे कैसे बेशरम लोग हो गए हैं, बाइक तो ऐसे निकाल रहे हैं जैसे नागिन।
9: अरे भाई और तेज भागा।
10: आपकी एक भूल आप पर भारी पड़ सकती है। दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट जरूर पहने, ट्रैफिक रूल्स और सिग्नल्स का पालन करें, खुद को और अपने साथ सड़क पर चलने वालों को सुरक्षित रखें। 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
11: 91.2 FM हेलो बनारस पे आ गए हैं डॉक्टर लाठी। व्हाट अ बिजी डे।
12: डॉक्टर साहब मैं भी समय के साथ चलना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ?
11: दिस इज वेरी टाइम मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन। देखो यार, तुम ऐसा करो, तुम अपने दोनों पैरों में घड़ी बांध लो, उसके बाद तुम भी समय के साथ चलना सीख जाओगे भाई।
13: 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी।
11: ऐसी मेरी सी आवाज में कौन प्रमोशन करता है भाई।
14: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।

हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस पर दिन है सोमवार और अब आप सबका एंटरटेनमेंट है लगातार, क्योंकि बरसात के मौसम में मिर्ची के पकोड़ों जैसी तीखी और चटपटी बातें लेकर हाजिर है आपकी बंदी बनारसी। तो अपने दिन भर के स्ट्रेस को करो दूर और वाइब करो ना डूड। आज के प्रोग्राम में होंगी शहर की बातें ढेर सारी, चढ़ेगी हम सब पर गॉसिप की खुमारी और इसके साथ ही ट्रैफिक अपडेट्स भगाएंगे आपकी स्ट्रेस सारी। पर इस सब को आप मिस आउट ना करें, उसके लिए आपको करना होगा एक काम, आपको बने रहना होगा मेरे साथ इन माय शो इवनिंग गपशप विद आरजे अमीषा, शाम 6 बजे से लेकर 9 बजे तक सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा 91.2 FM, हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी।

0: चुप चाप।
1: अरे ये क्या किया?
2: तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ ताड़ के।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस पर, मैं हूँ आपकी आरजे अमीषा। और चाहे दिल्ली वाले से मिलना हो या फिर बनारस वाली से, सिग्नल तोड़ने पे जुर्माना तो लगेगा ही। और मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस से ऐसी वाली गलती ना हो ना, इसके लिए आप इस समय भेलूपुर से होते हुए तिलभांडेश्वर वाले रूट को ना थोड़ा सा अवॉइड ही करना, क्योंकि इस समय मुझे दिख रहा है वहाँ पे हैवी वाला जाम, जहाँ पर आप और आपके व्हीकल्स दोनों जाकर फंस सकते हैं। फिर चाहे दिल्ली वाली हो या फिर बनारस वाली, उससे मिलने में लेट हो जाएगा यार। स्टे सेफ, ट्रैवल सेफ, और ऐसी ही ट्रैफिक अपडेट्स के लिए सुनते रहो आपका पसंदीदा 91.2 FM, हेलो बनारस। बोले तो पक्का बनारसी।

0: के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: क्या आपका सपना है नर्सिंग के क्षेत्र में शानदार करियर बनाना? तो तैयार हो जाइए, मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
2: जी हाँ, यहाँ मिल रहा है शानदार अवसर। ANM डायरेक्ट एडमिशन, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से।
1: लेकिन सवाल है, आखिर क्यों चुने मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज?
2: क्योंकि यहाँ है अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन रिजल्ट, नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
1: और सबसे खास, देश के बड़े हॉस्पिटल्स में शानदार प्लेसमेंट।
2: साथ ही सेवा योजन विभाग द्वारा निशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण, ताकि आपका करियर पहुंचे इंटरनेशनल लेवल तक।
1: सीटें सीमित, तो देर मत कीजिए, आज ही मिलिए और अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान।
2: कॉल करें 770-590-9071 या फिर 770-590-9070।
1: मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, गाजीपुर रोड, लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी।
3: पंक्ति यात्रा।
4: सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी बहल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। प्रस्तुत पंक्तियां निदा फाजली द्वारा रचित हैं।
3: पंक्ति यात्रा।
2: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
5: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
2: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीड़ फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मेरिडियन हॉस्पिटल, लेढ़ोपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
6: बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
7: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
6: अरे, आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज है।
8: है ना, मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।
9: यूपी को मिली ग्लोबल पहचान, निवेश का बना पसंदीदा स्थान। यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सिंगापुर और जापान यात्रा से यूपी में वैश्विक निवेश का बड़ा द्वार खुल गया है।
10: सिंगापुर एवं जापान यात्रा में रिकॉर्ड 1.5 लाख करोड़ के MOU पर हस्ताक्षर हुए, साथ ही 2.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।
9: ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर रेडी सेक्टर्स का हब बनने की ओर अग्रसर यूपी में माननीय मुख्यमंत्री जी की इस यात्रा से रोजगार के लाखों अवसर सृजित होंगे।
10: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी।
11: सेवानिर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।
12: 91.2 FM, हेलो बनारस पे आ गए हैं डॉक्टर लाठी। व्हाट अ बिजी डे।
13: डॉक्टर साहब, ये हर बार मंडे इतनी जल्दी क्यों आ जाता है? ओह दैट्स अ वेरी स्कैरी क्वेश्चन। देखो यार, मंडे में मन होता है और मन तो इधर उधर भागता रहता है, तो इसलिए मंडे भी इधर उधर भागता है, वो जल्दी आ जाता है यार। 91.2 हेलो बनारस पे, ये थे डॉक्टर लाठी। ऐसी मेरी सी आवाज में कौन परमिशन करता है भाई।
14: बेटा काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
15: अंकल आती हूँ अंकल। अरे
14: अरे बेटा,
15: ये क्या कर रहे हो अंकल?
14: सुनो
15: गलत
14: तो,
15: है ये।
14: अरे सुनो बेटा
15: अंकल।
16: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 एफएम हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
17: 91.2 एफएम हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
18: पक्का बनारसी।

0: गपशप।
1: भाई रिलैक्स तो इतना हो गए कि अब ऑफिस में भी बैठ के नींद ही आ रही है। 91.2 FM, हेलो बनारस को किया है आप सभी ने ट्यून इन। और जैसा कि आप जानते हैं कि चल रहा है आपकी शाम वाला शो यानी कि इवनिंग का गपशप। हाँ जी, और इवनिंग गपशप में दोस्तों अब वक्त हो चुका है जानने का कि क्या है आज का हेल्थ अपडेट यानी कि क्या है आज की हेल्थ की हितकारी एडवाइस। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि घी को हमारे इंडियन कल्चर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, और चूंकि उसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स और विटामिंस होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और घी को लेकर एक स्वास्थ्य नुस्खा ये है कि अगर आपको सोने में या फिर रिलैक्स होने में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं, रात को नींद नहीं आती, इंसोमेनिया है आपको, तो आपको करना है एक काम, आपको हल्के गुनगुने दूध में हल्का सा घी डाल के आधा टीस्पून आप घी उसमें डालिए, थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी डाल दीजिए और फिर रात में उसको पी के सो जाइए। बाय गॉड, बॉडी इतनी रिलैक्स हो जाएगी ना कि अगले दिन तक पूरे दिन सोने का ही मन करेगा। बाकी ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए मेरे साथ ओनली ऑन 91.2 FM, हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।

क्या यार, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से बनारस का ट्रैफिक। 91.2 FM, हेलो बनारस। पर आपको बनारस के ट्रैफिक से इस तरीके से परेशान ना होना पड़े, उसके लिए आ चुकी हूँ मैं, आपकी दोस्त और होस्ट आरजे अमीषा, आपको बताने के लिए कि आपको इसका क्या उपाय करना है। तो दोस्तों, अगर आप अभी इस समय, इस वक्त, एकदम प्रेजेंट में अगर आप जा रहे हैं जैतपुरा साइड में, जो राजा बाजार वाला रोड है, वहां पे अगर आप जाओगे नक्की घाट की ओर से राजा बाजार की तरफ, तो वहां पे आपको मिल सकता है जाम और कंजेशन। चूंकि वहां पे रेलवे क्रॉसिंग है, तो अधिकतर समय वहां पर थोड़ा बहुत जाम आपको दिखेगा, और रोड भी जो है बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है, इस वजह से लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है वहां से आने जाने में। तो भाई, अगर आपको उस रेलवे क्रॉसिंग का कोई अल्टरनेट रास्ता मिल जाए, क्योंकि हमें तो पता ही है कि बनारस में अल्टरनेट का भी अल्टरनेट गली कहीं ना कहीं से मिली जाती है, तो अगर ऐसा कुछ है तो उस वाले रूट को आप प्लीज अवॉइड करें, क्योंकि आपको वहां पे हैवी ट्रैफिक और गर्मी में पसीने का जो है वो कहर देखने को मिल सकता है। फिलहाल ऐसे ही ट्रैफिक अपडेट्स के लिए आप स्टे ट्यून्ड करते रहिए ओनली ऑन 91.2 FM, हेलो बनारस पे, क्योंकि ये है पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।

0: गपशप।
1: अरे ये क्या बात हुई, आप गोदौलिया बोल के बिठाए और अब मलदैया उतार रहे हैं। 91.2 FM, हेलो बनारस पर चाहे गोदौलिया हो चाहे मलदैया, हम तो यहाँ आपको हर जगह की ट्रैफिक अपडेट देते हैं ना यार। लेकिन एक आप लोग हैं कि हमारी परवाह ही नहीं करते, तभी तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर फॉलोवर्स ही नहीं बढ़ रहे। पिंग मी ऑन माई इंस्टा हैंडल, दैट इज RJAMSHIAA। और फिलहाल अगर आप नदेसर से होते हुए राजा बाजार वाली रोड पर जा रहे हैं ना यार, तो अपने जो पेट्रोल से उनको थोड़ा बचा के धीरे धीरे से स्पेंड करना, क्योंकि वहां पर आपको बहुत सारा जाम मिलने वाला है। ऐसे ही ट्रैफिक अपडेट्स के लिए हर रोज सुनते रहो आपका अपना 91.2 FM, हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी।

0: चुपचाप।
1: अब सही समय आ गया है राज। अच्छा किरण। 91.2 FM हेलो बनारस को किया है दोस्तों आप सभी ने ट्यून इन, और जिसका भी नाम राज और सिमरन है उनको ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, बट हाँ मेरी बातें सुनने की जरूरत जरूर से है, क्योंकि भाई अमेरिकन स्टडी ने एक क्या जो है रिजल्ट दिया है मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी। तो अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी ने एक स्टडी करी कि मैरिज के लिए यानी कि शादी के लिए निकाह के लिए आइडियल एज क्या होती है और आइडियल एज गैप क्या होना चाहिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में। हाँ जी, तो इस स्टडी में पाया गया कि जो आइडियल एज गैप है अकॉर्डिंग टू दिस रिसर्च वो होना चाहिए 5 से 7 साल, यानी कि जो ग्रूम की एज है उसमें और ब्राइड की एज में 5 से 7 साल का डिफरेंस होना चाहिए, और ब्राइड ग्रूम से कम एज की होनी चाहिए। कई सारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और बायोलॉजिकल फैक्टर्स के चलते ऐसा उस स्टडी में बताया गया है, और कई सारे लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं कि अच्छा अच्छा निक जोनस और प्रियंका चोपड़ा को देख लो और बड़का आए हैं स्टडी करने वाले। तो भाई दोस्तों देखिए ये एक स्टडी है सिर्फ, और आपका अपना पर्सनल ओपिनियन पर्सनल हो सकता है, मैंने तो बस आपको जानकारी दी है, और ऐसी जानकारियों के लिए आप सुनते रहिए 91.2 FM हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी।

0: हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके आवास की गणना होगी। आइए अपनी भागीदारी से इसे सफल बनाएं। हर इंसान जुड़े, हर घर जुड़े और देश आगे बढ़े। सेंसस 2027, हमारी जनगणना, हमारा विकास।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस पे आ गए हैं डॉक्टर लाठी। व्हाट अ बिजी डे।
2: डॉक्टर साहब, ये ऑपरेशन थिएटर में फूलों की माला किस लिए है?
1: व्हाट अ फूलिश क्वेश्चन। देखो यार, ये मेरा पहला ऑपरेशन है, सफल हुआ तो मेरे लिए, नहीं तो तुम्हारे लिए है भाई। 91.2 हेलो बनारस पे ये थे डॉक्टर लाठी। ऐसी मेरी सी आवाज में कौन परमिशन करता है भाई।
3: अब अपने बिजनेस और स्टार्टअप्स को दीजिए नई पहचान। डिजिटल और रेडियो के जरिए अपने बिजनेस को पहुंचाएं लाखों लोगों तक। किसी भी तरह के एडवर्टाइजमेंट के लिए आज ही संपर्क करें हेलो बनारस 91.2 FM से। कॉन्टैक्ट 9125136000 या फिर हमें व्हाट्सएप करें 9839912912 पर। आप हमसे इंस्टाग्राम के जरिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टा हैंडल है हेलो बनारस FM। जल्दी कीजिए, आपकी तरक्की हमारा प्रयास।
4: पंक्ति यात्रा।
5: मैं चुप शांत और अडोल खड़ी थी, सिर्फ पास बहते समुद्र में तूफान था। फिर समुद्र को खुदा जाने क्या ख्याल आया, उसने तूफान की एक पोटली सी बांधी, मेरे हाथों में थमाई और हंसकर कुछ दूर हो गया। हैरान थी पर उसका चमत्कार ले लिया। पता था कि इस प्रकार की घटना कभी सदियों में होती है। लाखों ख्याल आए, माथे में झिलमिलाए, पर खड़ी रह गई कि उसको उठाकर अब अपने शहर में कैसे जाऊंगी। मेरे शहर की हर गली सकरी, मेरे शहर की हर छत नीची, मेरे शहर की हर दीवार चुगली। सोचा कि अगर तू कहीं मिले तो समुद्र की तरह इसे छाती पर रख कर हम दो किनारों की तरह हंस सकते थे और नीची छतों और सकरी गलियों के शहर में बस सकते थे। पर सारी दोपहर तुझे ढूंढती भी थी और अपनी आँख का मैंने आप ही घूंट पिया।

0: अपना अकेला किनारा किनारे को गिरा दिया और जब दिन ढलने को था समुद्र का तूफान समुद्र को लौटा दिया। अब रात घिरने लगी तो तू मिला है, तू भी उदास चुप शांत और अडोल, मैं भी उदास चुप शांत और अडोल, सिर्फ दूर बहते समुद्र में तूफान है।
1: प्रस्तुत पंक्तियां अमृता प्रीतम द्वारा रचित है।
2: क्या आपका सपना है नर्सिंग के क्षेत्र में शानदार करियर बनाना? तो तैयार हो जाइए, मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
3: जी हाँ, यहाँ मिल रहा है शानदार अवसर। ANM डायरेक्ट एडमिशन, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से।
2: लेकिन सवाल है, आखिर क्यों चुने मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज?
3: क्योंकि यहाँ है अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन रिजल्ट, नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
2: और सबसे खास देश के बड़े हॉस्पिटल्स में शानदार प्लेसमेंट।
3: साथ ही सेवा योजन विभाग द्वारा निःशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण, ताकि आपका करियर पहुँचे इंटरनेशनल लेवल तक।
2: सीटें सीमित, तो देर मत कीजिए, आज ही मिलिए और अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान।
3: कॉल करें 770-590-9071 या फिर 770-590-9070।
2: मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, गाजीपुर रोड, लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी।
4: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
5: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
4: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ। तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आए मेरिडियन हॉस्पिटल, लेढ़ोपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
6: बेटा, काफी बड़ी हो गई हो, अब अंकल के पास नहीं आओगी पहले जैसे?
7: अंकल, आती हूँ अंकल। अरे
6: अरे बेटा,
7: ये क्या कर रहे हो अंकल? गलत है ये।
6: अरे सुनो बेटा।
7: अंकल,
8: बाल उत्पीड़न हमारे समाज में आज की सबसे बड़ी समस्या है। अपने बच्चों को गुड टच एंड बैड टच के बारे में जरूर बताएं और उन्हें सतर्क करें। पॉक्सो एवं 91.2 FM हेलो बनारस द्वारा जनहित में जारी।
9: मनुष्य, नर्क जाने से पहले तेरी कोई आखिरी इच्छा?
10: महाराज, अब क्या ही बताएं, जिंदगी भर पत्नी की सुनते आए हैं, अब अपनी आखिरी समय में 91.2 हेलो बनारस सुनना चाहता हूँ।
9: चित्रगुप्त, इस मनुष्य की आखिरी इच्छा पूरी की जा रही।
10: जो आज्ञा महाराज।
9: चित्रगुप्त, ये कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा?
10: महाराज, इस डिब्बे को दीजिए तोड़ और 91.2 FM हेलो बनारस के ऐप को कीजिए डाउनलोड और हो जाइए मनुष्यों की तरह डिजिटल।
11: जी हाँ, अगर आप भी इनकी तरह देश और दुनिया के किसी भी कोने में 91.2 FM हेलो बनारस सुनना चाहते हैं, तो आज ही प्ले स्टोर पर या फिर एप्पल स्टोर पर जाएं और 91.2 FM हेलो बनारस की ऐप को इंस्टॉल करें।
12: 91.2 FM हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
13: पक्का बनारसी।
14: बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
15: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
14: अरे, आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज है।
16: है ना, मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।
17: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी में 24 घंटे निःशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।

जागते ओ गोरी जरा आंखों से उजाले, ढूंढ रहे तुझे लाखों दिलवा।

रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ डिप्रेशन, यानी कि जल्दी अगर आप उठेंगे तो डिप्रेशन के चांसेस घट जाते हैं 23% तक। उसके बाद आपका नर्वस सिस्टम अच्छे से काम करने लगता है। सुबह उठने वालों में ऐसा पाया गया है कि उनमें सेरोटोनिन लेवल जो है वो ज्यादा होता है, मतलब कि उनका मूड नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन आपका बढ़ जाता है, स्लीप क्वालिटी बेटर हो जाती है, हेल्थ का जो आपका मेटाबॉलिज्म है यानी कि तबीयत आपकी जल्दी खराब नहीं होगी, इम्यूनिटी बेटर हो जाती है, स्किन बेटर हो जाती है। और यार अब क्या करोड़पति बनना है करोड़पति आप बन सकते हैं लेकिन हेल्थ के। और फिलहाल दोस्तों ऐसी हेल्थ अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन 91.2 FM। हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी,
0: पक्का बनारसी।
3: अरे अरे अरे अरे, रुक जा।

0: कुछ कहोगे नहीं?
1: वो सब कुछ जो मुझे नहीं कहना चाहिए था मैं तुमसे हमेशा कहता रहा, और अब जब कुछ कहना चाहता हूँ तो कुछ कह नहीं पा रहा हूँ।
0: ऐसा मत कहो।
1: कितना बदनसीब हूँ मैं, जब तुम घर में थी तो मैं बाहर का बना रहा, और अब जब तुम्हें घर का बना हूँ तुम बाहर जा रही।
0: फिर तुम ही कहने वाले हो जो तुम्हें नहीं कहना चाहिए। मैं सब कुछ चाहती हूँ। तुमने सब को धोखा देना चाहा, लेकिन धोखे में तुम खुद आ गए। हम सब इस धोखे में खुश हैं। माँ, पिताजी, तुम, मैं, हम सब को इतने साल जो तलाश थी वो मिल गया। तुम्हें वो सब मिल गया जिसकी तुम्हें तलाश थी।

0: गपशप।
1: अरे आंटी जी, हर चीज का सलूशन पानी पीना थोड़े ही होता है।
2: बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए।
1: 91.2 FM हेलो बनारस पर वक्त हो चुका है आपकी आज की हितकारी स्वास्थ्य वाली एडवाइस का। तो आज हम बात करेंगे कि हम अपने बॉडी में खून यानी कि ब्लड की कमी को कैसे दूर कर सकते हैं। तो मैं आपको फटाफट से बताने वाली हूँ ऐसे 4-5 इंग्रेडिएंट्स और जो मील्स हैं जिनको खा करके आपकी बॉडी में आप जो ब्लड का लेवल है वो मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि पुरुषों में जो ब्लड का लेवल है उसका काउंट 14 से लेकर 16-17 तक होना चाहिए और वुमेन में एटलीस्ट 12 से लेकर 15 तक तो होना ही चाहिए। तो इसको मेंटेन करने के लिए आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं और कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको खाकर आप ये कर सकते हैं। नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज भुना चना। कोई टाइम नहीं आपके पास अपने हेल्थ का ध्यान देने के लिए, आप जाइए किसी दुकान पे भुना चना, रोस्टेड चना मांग लीजिए, उसे दिन में थोड़ा बहुत खाइए, स्नैकिंग करिए, उससे आपका जो आयरन लेवल है वो बढ़ जाएगा। एक जूस है जिसको मैं बोलती हूँ ABC जूस, यानी कि आंवला, बीटरूट और कैरेट का जूस। इस ABC जूस को अगर आप पियेंगे तो आपके बॉडी में इंस्टेंटली आयरन का लेवल बढ़ जाएगा और आपको बहुत ही रिफ्रेशिंग सा फील होगा। इसको आपको कम से कम 1-2 महीने तक तो पीना ही है भैया, तभी नहीं तो फिर आके बोलो अरे अरे अमीषा तुमने कहा था कि एक ही दिन में पी के फायदा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है यार। इसके अलावा सिसमे सीड्स यानी कि तिल गुड़ का लड्डू आपको जरूर से खाना है और इन सुपर फूड्स को ट्राई करके आप बन सकते हैं हेल्दी वाले वेल्दी। तो फिलहाल दोस्तों आप सुनते रहिए 91.2 FM ऐसे ही हेल्थ अपडेट्स के लिए, पक्का बनारसी।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है देखे?
0: अरे हो रहना किसी के,

बात जो है वो कहने में खराब लग सकती है, पर उसे कहना भी तो जरूरी है ना। 91.2 FM पर दोस्तों आपने ट्यून इन किया है, और जैसा कि आप जानते हैं कि इवनिंग गपशप वाला शो आपका चल रहा है, और जानने से पहले हम जो करते हैं ना एकदम हार्ट टू हार्ट वाली टॉक, उसमें मैं आपको आज कहना चाहूंगी ये बात कि कभी कभी ऐसा होता है जो हमारे क्लोज वंस होते हैं, हमारी फैमिली, हमारे क्लोज फ्रेंड्स, उनसे हम कभी ना अपनी जो बातें होती हैं उनको कहने में थोड़ा सा कतराते हैं कि क्या चीज़ हमें अच्छी लगती है, क्या चीज़ बुरी लगती है, आउट ऑफ जो अफेक्शन होता है उनका हमारे लिए या हमारा उनके लिए, उसमें हम लोग कई सारी चीज़ें ऐसी करते हैं, कई सारे बार ऐसी हम चीज़ें करते हैं जो हमारी कंफर्ट लेवल की नहीं होती हैं। कोई गिफ्ट देना हुआ, किसी तरीके का अप्रिसिएशन हुआ, या एक्स वाई जेड कोई भी चीज़, तो ये बात आपको उनको कन्वे ज़रूर करनी चाहिए कि देख भाई मेरी ना ये बाउंड्री है और मेरा ये लिमिट है, इससे ज़्यादा मैं एक्सटेंड नहीं कर पाऊंगी। और फिलहाल ऐसी ही ज्ञान वाली बात के साथ आप सुनते रहिए 91.2 FM, हेलो बनारस, ये है पक्का बनारसी।

0: मैंने दिल से कहा झूठा जग है झूठे जग की झूठी क्या है।
1: मैंने दिल से कहा उल्फत है दुश्वार उल्फत की राह है।
0: मैंने दिल से कहा।

0: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
0: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मरीडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आएं मरीडियन हॉस्पिटल, प्लेडूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
2: क्या आपका सपना है नर्सिंग के क्षेत्र में शानदार करियर बनाना? तो तैयार हो जाइए, मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
3: जी हाँ, यहाँ मिल रहा है शानदार अवसर। ANM डायरेक्ट एडमिशन, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से।
2: लेकिन सवाल है, आखिर क्यों चुने मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज?
3: क्योंकि यहाँ है अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन रिजल्ट, नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
2: और सबसे खास, देश के बड़े हॉस्पिटल्स में शानदार प्लेसमेंट।
3: साथ ही सेवा योजन विभाग द्वारा निःशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण, ताकि आपका करियर पहुँचे इंटरनेशनल लेवल तक।
2: सीटें सीमित, तो देर मत कीजिए, आज ही मिलिए और अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान।
3: कॉल करें 770-590-9071 या फिर 770-590-9070।
2: मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, गाजीपुर रोड, लेढ़ोपुर, आशापुर, वाराणसी।
4: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेड़ूपुर, आशापुर, वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259130 या 8004901248 पर।

0: इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।

0: गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
1: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सुधांशु। शुरू हो चुका है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। और आज पर्दे के पीछे में हम बात करेंगे चली चली रे पतंग।

जी हाँ, अब आप हमारे गाने से समझ गए होंगे कि फिल्म कौन सी है। तो बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ, अगर जिसे पता है वो 9839912912 पर हमें व्हाट्सअप करे। ये फिल्म बनी 1957 में, फिल्म का नाम है भाभी। हिंदी सिनेमा की एक सोशल और पारिवारिक फिल्म थी जिसे उस समय के दर्शकों ने बहुत ही ज्यादा पसंद किया। और ये फिल्म अपने इमोशनल स्टोरी, फैमिली वैल्यूज और उत्कृष्ट अभिनय के लिए आज भी जानी जाती है। इसके डायरेक्टर आर चंद्रा, कृष्णन पंजू की जोड़ी ने फिल्म का डायरेक्शन किया, जो साउथ इंडिया की फिल्मों से आए थे। और निर्माता कंपनी थी एवी मेयप्पन, जो कि साउथ इंडिया की मशहूर फिल्म कंपनी है। और संगीत दिया चित्रगुप्त साहब ने। मुख्य कलाकार बलराज साहनी, पंडरीबाई, जगदीप, शांति देवी, नंदा और राजेंद्र नाथ। तो आज बात होगी पर्दे के पीछे में फिल्म भाभी के बारे में, ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर विद आरजे सुधांशु, क्योंकि यही है पक्का बनारसी।

0: से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
1: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सुधांशु। चल रहा है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। और आज पर्दे के पीछे में हम बात कर रहे हैं फिल्म भाभी के बारे में। पहले संयुक्त परिवार के बारे में ढेर सारी फिल्में बनती थी और उन्हीं से प्रमोट किया जाता है कि संयुक्त परिवार में मजा क्या होता है। और आजकल की फिल्में जो बनती हैं वो एकल परिवार की होती हैं। इसीलिए ज्यादातर घरों में अगर तीन भाई हैं तो तीन फ्लैट ले लिए जाते हैं, एक दिल्ली में, एक बॉम्बे में, एक हैदराबाद में। तीनों तीन शहर में जाकर के बस जाते हैं और उनको लगता है उसी में मजा है। लेकिन जो मजा संयुक्त परिवार में है वो मजा कहीं और नहीं है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि एक आदर्श भाभी अपने देवर को अपने बच्चों जैसा मानती है और एक भाभी चाहे तो उस परिवार को बहुत ही खूबसूरती से सजा और संवार सकती है, क्योंकि भाभी को तभी तो माँ का दर्जा दिया जाता है। लेकिन चूंकि ये फिल्म है इसलिए इसमें ह्यूमन इमोशंस, ईर्ष्या और गलत फहमियां दिखा करके थोड़ी सी फिल्म ही बनाई जाती है। लेकिन एक दर्शक होने के हिसाब से देखेंगे तो ये फिल्म ये दिखाती है कि कैसे एक भाभी अपने परिवार को जोड़ कर रखने वाली कड़ी होती है और जब परिवार में मतभेद बढ़ते हैं तो सब कुछ बिखरने लगता है। लेकिन फिर से अगर वो भाभी अपने रूप में आ जाए तो फिर से परिवार जोड़ सकती है। बातें आज चलेंगी भाभी के बारे में ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस विद आरजे सुधांशु। बोले तो यही है पक्का बनारसी।

0: गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
1: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सुधांशु। चल रहा है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। और आज पर्दे के पीछे में हम बात कर रहे हैं भाभी के बारे में। जी हाँ, ये फिल्म आई 1957 में। तो वैसे ये फिल्म तेलुगु फिल्म का रीमेक है। अर्थंगी नाम की एक फिल्म तेलुगु में आई 1953 में, काफी हिट फिल्म थी। इसी पर इस साउथ इंडियन डायरेक्टर्स ने हिंदी फिल्म भाभी बनाई। और इस फिल्म का एक बड़ा ही खूबसूरत गाना

इस फिल्म से एक नई पहचान मिली नंदा को। नंदा इसमें सुपर डुपर हीरोइन के रूप में उभर के आई, जो बाद में छोटी बहू, गंगा जमुना जैसी फिल्मों में भी नजर आई। कुल मिलाकर के इस फिल्म में नंदा ने अपना सिक्का जमा दिया। इस फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी इमोशनल और इतने प्रभावशाली सीन थे कि इसे आदर्श भारतीय परिवार की मिसाल माना गया। और बलराज साहनी साहब का अभिनय तो हमेशा की तरह अपने किरदार को बहुत खूबसूरती और बड़ी सच्चाई से निभाया। तो बातें हमारी यूं ही चलती रहेंगी आज भाभी के बारे में, पर्दे के पीछे, ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर विद आरजे सुधांशु, क्योंकि यही है पक्का बनारसी।

0: गॉसिप से लेकर सिनेमा की टॉप हिट्स तक, हर बात से पर्दा हटेगा ओनली ऑन पर्दे के पीछे विद आरजे सुधांशु। ट्यून इन पर्दे के पीछे एवरी डे 2 PM to 3 PM एंड 9 PM to 10 PM ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस। ये है पक्का बनारसी।
1: नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त सुधांशु। चल रहा है हमारा शो पर्दे के पीछे ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर। आज पर्दे के पीछे में बात हो रही 1957 की आई हुई फिल्म भाभी। इस फिल्म का संगीत दिया चित्रगुप्त साहब ने। उस समय उतने प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें काफी ज्यादा फेमस कर दिया, क्योंकि इसके पारिवारिक फिल्मों के लिए एक भावुक संगीतकार की आवश्यकता

अपने काम में उन्होंने जरा सा भी कोई चूक नहीं की और भाभी फिल्म के गीतकार राजेंद्र कृष्ण ने हर गीत में संस्कारी और बड़े ही संवेदनशील शब्दों का चयन किया और उनके शब्दों में कभी कभी कविता की गहराई महसूस होती थी। अब बात करते हैं इसकी मेकिंग के बारे में। इसका मेकिंग हुआ AVM स्टूडियोज में, जो कि चेन्नई में है। उस समय की ज्यादातर हिंदी फिल्में बॉम्बे में शूट होती थी, लेकिन भाभी ने साबित कर दिया कि साउथ इंडियन की टेक्निक भी कहीं किसी से कम नहीं है, इमोशनल रूप से काफी सक्षम है। इस फिल्म में पंडरी बाई ने हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया। उनकी हिंदी काफी कमजोर थी, लेकिन उन्होंने डायलॉग्स को याद करके और बड़े ही स्वाभाविक अभिनय किया। दर्शकों को वो आदर्श भाभी के रूप में काफी पसंद आने लगी। बलराज साहनी साहब की बात करें तो वो बड़े भाई की भूमिका में थे, खुद एक प्रोफेसर और लेखक भी थे, इसीलिए उनका अभिनय हमेशा आत्मीय और काफी गंभीर होता था। भाभी में उन्होंने किसी हीरो की तरह नहीं बल्कि घर के एक मजबूत पिलर की तरह भूमिका निभाई। आज पर्दे के पीछे में भाभी के साथ बस इतना ही। अगली बार एक नए व्यक्तित्व, एक नई कहानी लेकर आपके सामने हम होंगे। ओनली ऑन 91.2 FM हेलो बनारस पर विद आरजे सुधांशु। सुनते रहिए इसी तरह से, क्योंकि यही है पक्का बनारसी।

0: जारी।
1: सेवा निर्मित सैन्य बलों के निशुल्क इलाज के लिए ECHS योजना, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए CGSH योजना, आयुष्मान भारत योजना एवं राज्य सरकार कर्मचारियों के निशुल्क इलाज के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत मेरिडियन हॉस्पिटल लेडूपुर आशापुर वाराणसी में 24 घंटे निशुल्क इलाज उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0542259100 या 8004901248 पर।
2: क्या आपका सपना है नर्सिंग के क्षेत्र में शानदार करियर बनाना? तो तैयार हो जाइए, मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज में नए सत्र की एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।
3: जी हाँ, यहाँ मिल रहा है शानदार अवसर। ANM डायरेक्ट एडमिशन, GNM, BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के माध्यम से।
2: लेकिन सवाल है, आखिर क्यों चुने मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज?
3: क्योंकि यहाँ है अनुभवी शिक्षक, स्मार्ट क्लासरूम, बेहतरीन रिजल्ट, नियमानुसार सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति
2: और सबसे खास, देश के बड़े हॉस्पिटल्स में शानदार प्लेसमेंट।
3: साथ ही सेवा योजन विभाग द्वारा निःशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण, ताकि आपका करियर पहुँचे इंटरनेशनल लेवल तक।
2: सीटें सीमित, तो देर मत कीजिए, आज ही मिलिए और अपने सपनों को दीजिए नई उड़ान।
3: कॉल करें 770-590-9071 या फिर 770-590-9070।
2: मेरिडियन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, गाजीपुर रोड, लेढ़ूपुर, आशापुर, वाराणसी।
4: जब स्वच्छता की होगी बात, तभी सुधरेगा घर परिवार।
5: क्योंकि 91.2 FM हेलो बनारस आपके लिए लेकर आ रहा है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी, रेडियो की जुबानी, जिसमें मैं स्वच्छिका
4: और मैं सुजल आपको देंगे जानकारी की भरमार।
5: तो सुनना ना भूले, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित एवं कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित ये कार्यक्रम ठीक शाम 5 बजे से।
6: अरे बहन, इतनी परेशान क्यों हो?
7: क्या बताऊं, शादी को 5 साल हो गए लेकिन घर में अभी तक खिलकारी नहीं गूंजी।
6: अगर ऐसी बात है तो आज ही जाओ मेरिडियन हॉस्पिटल, जहां का स्त्री रोग विभाग अब और भी अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ एनोरेक्टल सर्जरी, बहुत कम चीर फाड़ में बच्चेदानी और फाइब्रॉइड्स की सर्जरी सहित महिलाओं से जुड़े सभी रोगों का जांच एवं इलाज अब एक ही छत के नीचे। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ललित यादव और उनकी समर्पित टीम के साथ तो महिलाओं से संबंधित सभी रोगों के परामर्श और इलाज के लिए निसंकोच आए मेरिडियन हॉस्पिटल, लेडूपुर, वाराणसी। आपका स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता।
8: बेटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है?
9: ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB।
8: अरे, आपकी बेटी तो मैथ्स में बहुत तेज
10: है ना? मैंने अपनी बेटी का एडमिशन करवाया है दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में। अगर आप भी अपने बच्चों को देना चाहते हैं उज्जवल भविष्य, तो एडमिशन करवाएं दिव्य डायमंड पब्लिक स्कूल में, जहां आपको मिलता है आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य का वादा। नर्सरी टू क्लास 8, सारंग तालाब चौराहा, पंचकोसी रोड, वाराणसी।

0: मंचन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: A ladka

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: Allad pak.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ दुर्ग।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
4: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़।

0: भूषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: शंख, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: भीमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.
3: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.
3: Hello Banaras.
1: Allad pakka.

0: पंचम, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello
3: Banaras,
1: 91.2 FM, Hello Banaras,
4: Hello Banaras।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: A ladka

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस
5: 91.2 FM, हेलो बनारस,
6: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: हेलो
4: हेलो
3: हेलो बनारस।
2: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: भाषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: कंचन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.
3: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello Banaras.
4: 91.2 FM. Hello Banaras.
1: Hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
5: Hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस,
4: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
2: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस
5: 91.2 FM, हेलो बनारस,
6: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
4: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: हेलो।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: भाषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: कंचन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अलर्ट

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad.

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस,
3: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
2: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
4: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
2: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: शंख जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
2: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
4: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस।
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: पंचम, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello
3: Banaras,
1: 91.2 FM, Hello Banaras,
4: Hello Banaras।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: A ladka

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बनारस दिल के बहुत करीब बनारस 91.2 FM हेलो बनारस पक्का बनारसी
1: हेलो बनारस
0: 91.2 FM हेलो बनारस अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: A ladka

0: भीमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
4: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: अल्लड़

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
2: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
4: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.
3: Allad pakka.

0: मंचन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अलर्ट

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.
1: Allah.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: अल्लड़ पक्का।

0: भीमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बनारस पक्का बनारसी।
1: हेलो बनारस।
0: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: Allad pak.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: A ladka

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो,

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद,
1: बुद्ध धम और सारनाथ।
0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
2: इतिहास से भी परे बनारस,
3: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
2: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
4: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
2: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: शंख जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
1: बनारस। अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
4: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस।
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: इतना नहीं, बहुत बनारस।
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.
3: Allad pakka.

0: पंचम, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello
3: Banaras,
1: 91.2 FM, Hello Banaras,
4: Hello Banaras।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: Allad pak.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: भजन जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
4: बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: मिथिला नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: लड़ता

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस।
4: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
4: Hello, Banaras.

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello,
4: Banaras.
5: 91.2 FM, hello Banaras.
6: Hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: शंख जय शंकर प्रसाद अजान आरती शंखनाद बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.
3: Hello Banaras.
1: Allad pakka.

0: दर्शन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: A ladka

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस,
1: अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: Allad pak.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: रामचंद्र, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ता

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भजन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस
5: 91.2 FM, हेलो बनारस,
6: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लाह।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello Banaras.
4: Allad

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस, 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
2: पक्का बनारसी।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, hello, Banaras.
3: Hello, Banaras.
1: Allad pakka.

0: पंचम, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु घुमक्कड़ चचा भुकाली रईसी ठाट टोंगल।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
3: अल्लड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस,
5: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
3: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्का।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम्म और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
3: अल्लड़

0: किशन, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
4: हेलो बनारस
5: 91.2 FM, हेलो बनारस,
6: हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो
2: बनारस,
4: 91.2 FM,
2: हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पकड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello Banaras.
1: 91.2 FM, Hello Banaras. Hello Banaras. Allad pakkal guru.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras. 91.2 FM, Hello, Banaras.
1: अल्लड़ पकड़।

0: चंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो
3: बनारस,
1: 91.2 FM, हेलो बनारस। अल्लड़ पक्का।

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: Hello, Banaras.
4: 91.2 FM, hello Banaras.
5: Hello Banaras.

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस।
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: भीषण, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: Hello,
3: Banaras.
2: 91.2 FM, hello, Banaras.
4: अलर्ट,

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धाम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
3: अल्लड़ पकड़

0: प्रेमचंद, जय शंकर प्रसाद, अजान, आरती, शंखनाद, बुद्ध धम और सारनाथ। बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस, अद्भुत आदि अनंत बनारस, दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
2: हेलो बनारस,
3: 91.2 FM,
1: हेलो बनारस। अल्लड़ पकड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
0: पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस, पक्का बनारसी।
3: हेलो बनारस,
4: 91.2 FM, हेलो बनारस।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।

0: बस इतना नहीं, बहुत बनारस,
1: इतिहास से भी परे बनारस,
2: अद्भुत आदि अनंत बनारस,
1: दिल के बहुत करीब बनारस। 91.2 FM, हेलो बनारस,
3: पक्का बनारसी।
1: अल्लड़ पक्कड़ गुरु।